0: 152. Hello.
1: हाँ जी नवीनवीर जी वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: एक दे वीर जी तुहानू लाना भी मैं पिछले फ्राइडे ना फोन लाया ते वीर जी 20 मिनट फोन चलिया मेरी गल नहीं तुहां कीती मेरे नाल 20 मिनट लगातार ते मुड़के ओ चुक लिया जदों संधू साहब हुणी आए ते उहनां ने चुकिया कॉल चली गई।
0: चलो कई बार हो जांदा। हाँ जी
1: चलो कोई ना ते मेरी बेनती है भी तुसी एक ना कोई क्विजरी भाई निर्मल सिंह कोई होया क्विजर चोला साहब दा कोई क्विजरी बना दो जी।
0: ठीक है जी कोशिश कर दे
1: निर्मल सिंह चोला दा कोई बना दो जी सिंह दी कोई।
0: चलो कर दे ट्राई। ठीक है
1: ओके
0: जी ओके। सो प्रोग्राम है पंजाबी रहा नंबर है अपना 905-673-3337 905-673-3337 अपनी बिजनेस दी एडवरटाइजमेंट दे लई या होर कोई भी जानकारी लैण दे लई कॉल करो 647-504-1557 647-504-1557। वेरी गुड। एक मैसेज जरूरी है फिर।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 6475041557।
2: वेरी गुड। ओके, मैं थोड़े लिए गाना लाना शुभ होना था। बड़ा तकड़ा गीत है यार, मैंने बड़ा वधिया लगता। ते शुभ भरी बाउंस।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 Royal

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: आपके अमर वीरसे की पुत्र जो यापन के संत वैसा करता हम सफर साझा वीरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज महकां दे सौगात वंडदा साझा वीरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस डे पर चार ते पसार ले संपर्क करो
2: साझा वीरसा दी टीम नू 647-835-5294 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: रात हमें छड़ देनी है। पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने। मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905 874 98

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road,

0: 0015.
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच ते चूहे, ओ हाले महीना पहला ते ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
0: आप घर चो बाहर क्यों जा?

0: 1230.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: कैसा लेदर जड़े के इको ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार कर देने कैनेडियन मेड अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हर साल सोफा तैयार करवाओ चार सीटा वाला पांच सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी है 11x11 10x10 दा सोफा सेट तैयार करवा सकदे हो इना दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क उथे बहुत बड़ा शोरूम है ते पहला शोरूम है 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन नंबर है परमजीत कौर फोन दा 905-792-8053
2: 9205 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 2 8 0 5 3 9 647-739-8710 लाइसेंस नंबर M200-34504
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
5: जेकर सीवी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: टीम सिद्धू लेके आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील्ड रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा